आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन के इस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश शामिल हैं। इनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोबो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रुसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में शामिल होंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेइरा कल रात नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई अन्य देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें कर सकते हैं। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, 12 खंबा रोड, नीति मार्ग

0: पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सामान्य रूप से चलेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया कि शनिवार को होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। दोनों के बीच सामाजिक विकास, सिंचाई, सहकारिता, प्राकृतिक खेती, मोटे अनाज और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने क्षेत्रीय स्वास्थ्य साझेदारी को मजबूत करने और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। श्री नड्डा ने तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और लोगों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर लगातार काम कर रहा है। सत्र में भारत को संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना आवश्यक है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। नई दिल्ली नगर निगम ने अनधिकृत निर्माण के मामले में लापरवाही बरतने पर भवन विभाग के 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में 1 सहायक अभियंता और 2 कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मध्यम लहरी 13.5 किलोहर्ट्स वर आणि एफएम बँड 102 मेगाहर्ट्स वर आपण ऐकत आहात आकाशवाणी परभणी केंद्राचं प्रसारण। श्रोतेहो, सकाळचे 6:05 झाली आहेत, आता प्रसारित करत आहोत नमस्कार परभणी अंतर्गत। मनामनात सद्विचारांची रुजवण करणारा आमचा दैनंदिन कार्यक्रम विचार शलाका। आज या कार्यक्रमांतर्गत आपण ऐकणार आहोत अभिवादन याविषयी अंजली कुलकर्णी यांचे मौलिक विचार। ऐकूयात कार्यक्रम विचार शलाका।

0: नमस्कार, समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि। अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने नौकरी जाने के बाद H-1B कर्मचारियों के लिए 60 दिन की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की दोबारा हुई परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की। और भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिवसीय इस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन हिस्सा लेंगे। अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली और सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद सम्मेलन में शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अधानोम घेब्रियसिस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पहुंचने पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और रूस के बीच लंबे समय से विशेष रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मजबूत और बहुआयामी संबंध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की भी संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। और ब्योरा हमारी संवाददाता से।
1: ब्रिक्स समूह का गठन सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुई ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर हुआ था। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातरिनबर्ग में आयोजित किया गया। वहीं सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक विदेश मंत्रियों

0: की बैठक के बाद दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ ब्रिक का विस्तार हुआ और इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। दक्षिण अफ्रीका ने अप्रैल 2011 में चीन के सान्या में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लिया। जनवरी 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के पूर्ण सदस्य बनने के साथ ब्रिक्स का और विस्तार हुआ। भारत ने इस वर्ष 1 जनवरी को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। यह चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले भारत ने 2012, 2016 और 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। एक दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापार मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के नेता, वैश्विक निवेशक और उद्योग जगत के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। इसका आयोजन ब्रिक्स व्यापार परिषद द्वारा फिक्की, CII और एसोचैम के सहयोग से किया जा रहा है। ये सम्मेलन 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित होने वाला प्रमुख कारोबारी कार्यक्रम है। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस इनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सामान्य रूप से चलती रहेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान लोगों के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि शनिवार को राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति सिलवासा में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राजकीय महाविद्यालय में सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे। वे सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर और नमो आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान सहित प्रमुख संस्थानों का भी दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति दमन में नमो अस्पताल भी जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना बेहद जरूरी है।
2: अब सभी भूमि के रिकॉर्ड डिजिटाइज किए जा रहे हैं और अब ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया से कोई भी उनको आसानी से प्राप्त कर सकता है। रजिस्ट्रार जो ऑफिस थे उनको भी पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां नागरिकों को बैठने का स्थान होगा, लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। आसानी से पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा वो कहीं से भी अपने रिकॉर्ड्स को प्राप्त कर सकेंगे।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूखा प्रभावित इलाकों में खेती को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, बेहतर नीतियों और बाजार सहयोग के साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया है। नई दिल्ली में ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि उचित वैज्ञानिक उपायों, नीतियों और बाजार सहयोग से सूखे क्षेत्रों को भारत के लिए ताकत का स्रोत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कृषि व्यवस्था में बदलाव का मुख्य उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि किसानों की आजीविका और समृद्धि में सुधार होना चाहिए।
2: हमें यह तय करना होगा कि 2047 तक ड्राई लैंड में पानी की उत्पादकता कितनी बढ़ानी है, मिट्टी का स्वास्थ्य कितना सुधारना है, दलहन और तिलहन का उत्पादन कैसे बढ़े, आयात निर्भरता भी घटाना है, किसान की आय बढ़ाना है और जलवायु सहनशीलता को भी बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का 7वां संस्करण आज मुंबई में संपन्न हो रहा है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: 4 दिवसीय ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों ने भाग लिया। सम्मेलन में फिनटेक के भविष्य पर व्यापक चर्चा हो रही है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करेंगे। कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा, SEBI के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी ने एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित सत्रों को संबोधित किया था। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।

0: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि का एक प्रमुख आधार बताया है। यह बयान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि के बाद आया है। मुद्रा कोष के संचार विभाग के निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसकी मुख्य वजह सेवाओं और निर्यात में हुई बढ़ोतरी है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B कर्मचारियों और कई अन्य रोजगार आधारित वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद भी अमेरिका में 60 दिन रहने की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। गृह सुरक्षा विभाग का ये प्रस्ताव आज फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित होगा। एक रिपोर्ट।
4: इस बदलाव के बाद नौकरी जाने पर नई नौकरी तलाशने या वीजा की दूसरी व्यवस्था करने के लिए मिलने वाला समय काफी कम हो सकता है। ये प्रस्ताव E1, E2, E3, H1B, H1B1, L1, O1 और TN जैसी वीजा श्रेणियों और उनके आश्रितों पर लागू होगा। अगर ये प्रस्ताव अंतिम रूप लेता है तो लोगों की नौकरी या वीजा से जुड़ी पात्र गतिविधि समाप्त होने के बाद उन्हें तुरंत अमेरिका छोड़ना होगा या उन्हें वहां रहने के लिए कोई दूसरी कानूनी अनुमति लेनी होगी। विभाग के अनुसार प्रस्ताव का उद्देश्य पहले की व्यवस्था को बहाल करना है। इसके तहत प्रायोजक नियोक्ता की नौकरी खत्म होते ही कर्मचारी को अमेरिका छोड़ना होता था। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 की अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी करती है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंग्रेजी और वाणिज्य की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा कल आयोजित की गई थी। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। भारत के 150 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश 109 रन ही बना सकी। शेफाली वर्मा को 64 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। केरलम के कई हिस्सों में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पत्तनम थिट्टा, कोट्टयम, एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पत्तनम थिट्टा, एर्नाकुलम, इडुक्की और पलक्कड़ जिलों में कल भी येलो अलर्ट जारी रहेगा। इस बीच कल रात 11 बजे से केरलम तट पर ऊंची लहरों के कारण तटीय कटाव की आशंका को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी दिन के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल तक उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने, बिजली कड़कने और तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण सहायता शुरू करने को मंजूरी दी है। इसके तहत दिल्ली सरकार के खेल केंद्रों और स्टेडियम में नियमित प्रशिक्षण लेने वाले पात्र खिलाड़ियों को हर महीने ₹2,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
6: धन्यवाद फरहत। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए विदेशी मेहमानों का राजधानी दिल्ली में आगमन और रोशनी से जगमगाता भारत मंडपम।

0: आज सभी समाचार पत्रों में है। हिंदुस्तान लिखता है ब्रिक्स के लिए आज से दिल्ली किले में तब्दील, पुतिन मोदी की मुलाकात आज। राजस्थान पत्रिका ने प्रधानमंत्री मोदी का चित्र साझा करते हुए लिखा है बढ़ता दायरा बदलता विश्व, अक्षर से महाशक्ति बनने का सफर, ग्लोबल पावर का नया ध्रुव ब्रिक्स। अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत सुरक्षित और सतत अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। जनसत्ता की खबर है, लोकसत्य लिखता है प्रधानमंत्री मोदी का अंतरिक्ष में सहयोग को प्राथमिकता देने का आह्वान। अगस्त में बाजार 2% गिरा, फिर भी रिकॉर्ड 32,000 करोड़ SIP। दैनिक भास्कर ने यह खबर आंकड़ों सहित प्रकाशित की है। शहरों से ज्यादा गांवों में बिक रहे दोपहिया, 55% पहुंची हिस्सेदारी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में छोटी बाइक पहली पसंद, वहीं महाराष्ट्र और बिहार में बड़े इंजन पर जोर, दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है। दैनिक जागरण ने श्रीनगर में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कश्मीरी कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां देने का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है जन्नते कश्मीर में 4 दिन तक चला बॉलीवुड के दिग्गजों का मेला, बॉलीवुड का वादा कश्मीर को फिर बनाएंगे फिल्मों की जन्नत।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि के बाद भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की दोबारा हुई परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. 18th BRICS summit to begin at Bharat Mandapam in New Delhi tomorrow. Russian President Vladimir Putin arrives in New Delhi to attend the summit. IMF describes India a key engine of global growth after the country's economy expanded 7.8% in first quarter of current fiscal. Trump administration proposes scrapping 60-day grace period for laid off H-1B workers in US. National Testing Agency releases provisional answer keys for retest of English, Commerce and Sociology papers of UGC NET June 2026. And in cricket, India beat Bangladesh by 40 runs in first semi-final of Women's Asia Cup 2026 in Dubai. And the news in detail. The 18th BRICS summit will get underway at Bharat Mandapam in New Delhi tomorrow, with the national capital putting its finishing touches in place for the grand event. The two-day summit will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE. The theme of India's chairship 2026 is Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability. World leaders, including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, President of South Africa Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, Iran President Masoud Pezeshkian, Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and Prime Minister of Ethiopia Abiy Ahmed Ali will participate in the summit. Brazil will be represented by Foreign Affairs Minister Mauro Vieira. Saudi Arabia's Minister of Foreign Affairs, Prince Faisal bin Farhan Al Saud, will also participate in the summit. Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim and Vietnamese Prime Minister Le Minh Hung are the other heads of state who will attend the summit. United Nations Secretary General Antonio Guterres, Director General of WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, and President of New Development Bank Dilmah Khusuf are among the heads of international organizations who will participate in the event. Prime Minister Narendra Modi is likely to hold bilateral talks with Russian President Vladimir Putin today. The President of Russia and Foreign Minister of Brazil arrived in the national capital last night to participate in the summit. The President of South Africa is set to arrive this morning. Presidents of Iran, Indonesia, Egypt, Philippines and Burundi, Crown Prince of Abu Dhabi and Prime Ministers of Malaysia and Ethiopia are scheduled.

यह आकाशवाणी छत्रपति संभाजी नगर है। अब आप बशीरुद्दीन चिश्ती से इलाकाई खबरें सुनिए। सबसे पहले खास खबरों की सुर्खियां। एमपीएससी इम्तिहानी निज़ाम की खामियों को दूर करने के लिए ज़रूरी इकदामात किए जाएंगे, वज़ीर आला की यकीन दहानी। गणेश मूर्तियों की बढ़ती हुई ऊंचाई के माहौल पर पड़ने वाले असरात को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत का वज़ीर आला की जानिब से इजहार। बारिश न होने के बाद फसलों को पहुँचने वाले नुकसानात के पंचनामे करने की हिदायत। कानून के मुताबिक इमदाद देने की हुकूमत की यकीन दहानी। मराठवाड़ा में कुनबी ज़ात के सदाकत नामों की तकसीम के अमल में तेज़ी। बीड़ ज़िले में 25,000 से ज़ायद सर्टिफिकेट्स तकसीम। और नांदेड़ ज़िले में पेश आए सड़क हादसे में 8 अफराद हलाक, 4 ज़ख्मी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कल मुंबई में एमपीएससी इम्तिहानी निज़ाम के सिलसिले में रियासत भर से आए हुए तलबा के नुमाइंदों से मुलाकात की और मुख्तलिफ मुतालबात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने तलबा के तमाम मुतालबात मंजूर कर लिए। इस इम्तिहानी निज़ाम की खामियों को दूर करने की यकीन दहानी कराते हुए उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात पेश न आएँ, इसके लिए ज़रूरी इकदामात किए जाएंगे। उन्होंने वाजह किया कि पर्चा लीक होने के मामले में हुकूमत कुछ भी छुपाना नहीं चाहती, बल्कि निज़ाम को बेहतर करना चाहती है। वज़ीर आला ने बताया कि मजमूई तौर पर जामे असलाहत के लिए वी राधा की सदारत में एक नई कमेटी कायम की जा रही है। ये कमेटी रियासत भर का दौरा करेगी और तमाम शोबों में तलबा, वालदैन, असातिज़ा और मुतालिका अफराद से बातचीत करेगी। इसी दौरान वज़ीर आला फडणवीस ने कल नई मुंबई के वाशी में माहौल दोस्त महागणेश मूर्ति वर्कशॉप में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने गणेश मूर्तियों की बढ़ती हुई ऊंचाई के माहौल पर पड़ने वाले असरात को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि श्री गणेश की मूर्तियों की ऊंचाई बढ़ने के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनाई जाती हैं, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस और मूर्तियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कीमियाई रंगों की वजह से आबी वसायल आलूदा हो रहे हैं। उन्होंने तलबा से अपील की कि वो खुद से तैयार की गई मिट्टी की मूर्ति अपने घर में नस्ब करें। वज़ीर आला ने इस वर्कशॉप में मिट्टी की गणेश मूर्ति तैयार की। रियासत में बारिश के रुक जाने की वजह से जिन इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचा है, वहां फौरी तौर पर सर्वे करने की हिदायत वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इंतज़ामिया और चीफ सेक्रेटरी को दी है। महसूल के वज़ीर चंद्रशेखर बावनकुले ने कल नागपुर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये इत्तला दी। उन्होंने बताया कि महसूल, ज़राअत और देही तरक्की के महकमे मुश्तरका तौर पर ये सर्वे करेंगे, जिसके बाद कानून के मुताबिक किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। मराठवाड़ा में कुनबी मराठा कुनबी और कुनबी मराठा ज़ात के सदाकत नामों की तकसीम के अमल में बड़ी तेज़ी आई है। शिंदे कमेटी के क़याम से लेकर 7 सितंबर 2026 तक मौसूल होने वाली 3,17,569 दरख्वास्तों में से 3,16,977 कुनबी सर्टिफिकेट्स तकसीम किए जा चुके हैं। मौसूला दरख्वास्तों में से तकरीबन 99.8% दरख्वास्तों पर कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। सिर्फ 44 दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तवा हैं। दफ्तर की जानिब से ये इत्तला दी गई। इन सदाकत नामों की तकसीम में बीड़ ज़िले में सबसे ज़्यादा 54,000 में से 25,958 सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए हैं। छत्रपति संभाजी नगर ज़िले में 25,958, जालना में 18,653, परभनी में 20,190, हिंगोली में 13

1707, नांदेड़ में 4893, लातूर में 2870 जबकि धाराशिव ज़िले में 19775 सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए हैं। रियासती हुकूमत ने एहतजाज करने वाले मनोज जरांगे पाटिल के 15 मुतालबात के सिलसिले में मुस्बत फैसले किए हैं, इसलिए उन्हें अपना एहतजाज खत्म कर देना चाहिए। जालना की ज़िला कलेक्टर आशिमा मित्तल ने यह अपील की। कल मुनक़िदा अखबारी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मराठा कुनबी समाज के मुख्तलिफ मुतालबात के हवाले से गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से की गई कार्रवाई की तफसीलात बताईं। उन्होंने कहा कि कुनबी सर्टिफिकेट्स की दरख्वास्तें मुस्तरद होने की शरह नहायत कम है और हैदराबाद गजेटियर के मुताबिक 377 सर्टिफिकेट्स तकसीम किए जा चुके हैं। मराठा रिजर्वेशन तहरीक के रहनुमा मनोज जरांगे पाटिल ने कहा है कि मराठा समाज के मुख्तलिफ मुतालबात के लिए मुंबई में तय किया गया मोर्चा निकालने का अज़्म बरकरार है। वो कल अंतरवाली सराटी में बोल रहे थे। हुकूमत के नुमाइंदा वफद का इंतज़ार न करने की बात कहते हुए जरांगे ने कहा कि समाज के लोगों के एक साथ जमा होने की तारीख का 12 सितम्बर को ऐलान किया जाएगा। इनकी गैर मुइना मुद्दत की भूख हड़ताल का आज 13वां दिन है। रियासती हुकूमत के अन्ना साहब पाटिल इक्तिसादी तरक्की कॉरपोरेशन के पीछे मजबूती से खड़े रहने की वजह से मरहलावार इस कॉरपोरेशन के मुस्तफिदीन की तादाद 180,000 तक पहुंच गई है। कॉरपोरेशन के सदर नरेंद्र पाटिल ने ये इत्तला दी। वो कल मुंबई में एक अखबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 2018 से अब तक कॉरपोरेशन को 2,000 करोड़ रुपये फराहम किए गए हैं और मराठा कारोबारी अफराद तैयार करने के लिए 1,000 करोड़ रुपयों के कर्ज तकसीम किए गए हैं। मराठा रिजर्वेशन के मुतालबे के लिए लातूर ज़िले के निलंगा तालुके में वाक़ मसलगा में छावा तंजीम की जानिब से पानी की टाँकी पर चढ़कर एहतजाज किया गया। महकमे महसूल के मंडल अफसरान ने एहतजाज करने वालों के मुतालबात पर मबनी मेमोरेंडम कबूल किया और उनके मुतालबात के सिलसिले में हुकूमत के सामने फौरी तौर पर पैरवी करने की तहरीरी यकीन दहानी कराई। इसके बाद एहतजाज करने वाले नौजवान टांकी से नीचे उतर गए। ये खबरें आकाशवाणी छत्रपति संभाजीनगर से नशर की जा रही हैं। रियासत के तमाम 36 अजला में बाख्तियार मराठी जबान अफसरान मुकर्रर किए जाएंगे और हर ज़िले में अलहदा मराठी ज़बान का दफ्तर कायम किया जाएगा। मराठी ज़बान के वज़ीर डॉक्टर उदय सामंत ने कल नंदुरबार में ये ऐलान किया। इन दफातर के ज़रिए ज़िलाई सतह पर मराठी ज़बान के महकमे का कामकाज चलाया जाएगा। पोले का त्यौहार कल हर तरफ रिवायती तरीके से मनाया गया। साल भर खेतों में किसानों के साथ मेहनत करने वाले बैलों के तईं तशक्कुर का इजहार करने के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। परभनी ज़िले में इस त्यौहार पर खुशहाली का साया नज़र आया। हमारे नामा निगार ने इत्तला दी है कि इस बार किसानों ने ज़िले में पोले का त्यौहार सादगी के साथ मनाया। वहीं हिंगोली ज़िले में गुज़िश्ता 1 माह से बारिश न होने की वजह से खुशहाली के आसार के बावजूद किसानों ने यह त्यौहार जोश खरोश से मनाया। हमारे नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि बैलों को सजाकर मंदिर का चक्कर लगाने के लिए म्यूसिकी और ढोल ताशों के साथ जुलूस निकाले गए। नांदेड़ ज़िले के अर्धापुर तालुके के 12 गांव में शिवसेना के रहनुमा और रुकने असेंबली अंबादास दानवे ने बैलों की पूजा करके किसानों और बैलों के दरमियान अटूट रिश्ते का एहतराम किया। लातूर ज़िले में खुशकसाली का असर इस त्यौहार पर नज़र आया। कई किसानों ने उधार लेकर अपने प्यारे बैलों का पोला त्यौहार मनाया। चाकुर तालुके के वडवल नागनाथ में वट सिद्धनाथ मंदिर से तालियों और ताशों की गूंज में बैलों का जुलूस निकाला गया। नांदेड़ भोकर सड़क पर सीताखंडी घाट में एक ट्रक ने मैजिक ऑटो को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में होने वाले हादसे में 8 अफराद हलाक हो गए जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा कल शाम के करीब पेश आया। जख्मियों को इलाज के लिए भोकर और नांदेड़ के सरकारी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। हलाक होने वालों में मियाँ बीवी और 2 सगे भाई शामिल हैं और ये तमाम अफराद भोकर के रहने वाले थे। धाराशिव ज़िले में कृष्णा मराठवाड़ा आपाशी मंसूबे का पानी लाने के लिए तजुर्बाती जांच आइंदा माह करने की कोशिशें जारी है। ये इत्तला रुकन असेंबली राणा जगजीत सिंह पाटिल ने दी। वो कृष्णा मराठवाड़ा आपाशी स्कीम नंबर 2 के तहत जारी तरक्याती कामों का कल जायज़ा लेने के बाद सहाफ़ियों से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उजनी डैम के पानी को सीना नदी के रास्ते घाटने बैरेज तक पहुँचाने के लिए काबीना की मंजूरी हासिल करने की तजवीज़ जल्द ही पेश की जाएगी।
दुबई में जारी खवातीन की एशिया कप

0: T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। कल खेले गए सेमीफाइनल मैच में भारत ने बांग्लादेश को 40 रनों से शिकस्त दे दी। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 150 रनों का हदफ दिया, तहम बांग्लादेश की टीम 7 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 109 रन ही बना पाई। सेमीफाइनल का दूसरा मैच आज श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें। एक बार फिर MPSC इम्तिहानी निज़ाम की खामियों को दूर करने के लिए ज़रूरी इकदाम किए जाएंगे। वज़ीर आला की यकीन दहानी, गणेश मूर्तियों की बढ़ती हुई ऊंचाई के माहौल पर पड़ने वाले असरात को मद्देनजर रखने की ज़रूरत का वज़ीर आला की जानिब से इजहार। बारिश न होने के बाद फसलों को पहुँचने वाले नुकसान के पंचनामे करने की हिदायत, कानून के मुताबिक इमदाद देने की हुकूमत की यकीन दहानी। मराठवाड़ा में कुनबीजात के सदाकत नामों की तकसीम के अमल में तेज़ी। इसी के साथ आकाशवाणी से इलाकाई खबरें ख़त्म हुई। इसके बाद हमारे मरकज का अगला मराठी बुलेटिन ठीक 11 बजे नशर किया जाएगा।
1: दोनशे 29.9 meters अर्थात 305 kilohertz वर आणि FM बँड 102 megahertz वर हे आकाशवाणीचं परभणी केंद्र आहे। श्रोतेहो, सकाळचे 9:10 झाली आहेत।
2: कमी वेळात जास्त नफा,
3: बस एका क्लिकवर कमाल हसला।
4: अनोळखी लिंक्स वर क्लिक करू नका, RBI सांगते
5: जाणकार बना सतर्क रहा।
6: परभणीकरांसाठी आनंदाची बातमी, आता सोन्याच्या विश्वासाला लाभणार आहे नवा भव्य आणि शानदार पत्ता, पुणा गाडगे आणि सन्स। परभणीतील नवीन आणि भव्य शोरूम आता शिवाजी पुतळ्याजवळ, अधिक मोठी जागा, अधिक नवी डिझाईन्स आणि पिढ्यान पिढ्यांचा विश्वास, पुणा गाडगे आणि सन्स 1832 पासून।
1: श्रोतेहो, आता प्रसारित करत आहोत लखलख चंदेरी हा हिंदी चित्रपट गीतांचा कार्यक्रम।

मक्ता समाप्त फरमाए, बस इश्क मोहम्मद की ये मेराज है अफजल, बस इश्क

0: मुस्लिम दल, माफ कीजिएगा, सुबुगाही प्रोग्राम में आज आप समाप्त फरमा रहे थे डॉक्टर अब्दुल मंगलोड़ी से उनका हम दिया वो नातिया कलाम। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेशे खिदमत प्रोग्राम आज सवेरे।
1: और अब हम याद कर रहे हैं उन महान व्यक्तियों को जिनकी आज है पुण्यतिथि। इस क्रम में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं महाकवि महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा केवल एक नाम नहीं, हिंदी साहित्य की वो रोशनी थी जिसने अपनी कविताओं में असंख्य दिलों को छुआ, जिन्हें प्यार से आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी कविताओं में प्रेम, पीड़ा और आध्यात्मिकता की वही गहराई झलकती है जो मीरा की भक्ति में थी। 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जन्मी महादेवी का बचपन साहित्य और संस्कारों की छांव में बीता। पिता गोविंद प्रसाद वर्मा एक प्रगतिशील विचारधारा के थे तो माँ हेमरानी देवी धार्मिक थीं और संस्कृत तथा हिंदी की विदुषी थीं। यही कारण था कि महादेवी के मन में बचपन से ही शब्दों की महक बस गई। इंदौर के मिशन स्कूल से पढ़ाई की शुरुआत करने वाली उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत और चित्रकला सीखी, लेकिन उनके दिल को जो सबसे ज्यादा भाया वो था साहित्य का संसार। माँ ने उनकी इस रुचि को हमेशा प्रोत्साहित किया और यही सहारा आगे चलकर उन्हें साहित्य की बुलंदियों तक ले गया। और उनकी कविता की कुछ पंक्तियां अपने श्रोताओं को सुनाते हैं। चिर सजग आंखें उन्हीं दी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, आज भी आलोक के डोरे किमिन की घोर छाया, जागकर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। और अब हम याद कर रहे हैं प्रसिद्ध प्रगतिशील कवि गजानन माधव मुक्तिबोध को। मुक्तिबोध हिंदी साहित्य की स्वातंत्रोत्तर प्रगतिशील काव्यधारा के शीर्ष व्यक्तित्व थे। हिंदी साहित्य में सर्वाधिक चर्चा के केंद्र में रहने वाले मुक्तिबोध कहानीकार भी थे और समीक्षक भी। उन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का एक सेतु भी माना जाता है।
2: नेक्स्ट पर्सनालिटी इन आवर लिस्ट इज सुब्रमण्यम भारती, द सेलिब्रेटेड तमिल पोएट, जर्नलिस्ट एंड इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट। Known for patriotic poetry, Subramanya Bharti was also known as a social reformer, women's emancipation champion, and he vociferously opposed to caste discrimination.
1: जी हाँ, इन्हें महाकवि भरतियार के नाम से भी जाना जाता है। सुब्रमण्य भारती एक जुझारू शिक्षक, देशप्रेमी और महान कवि थे, और आपकी देशप्रेम की कविताएं इतनी श्रेष्ठ हैं कि आपको भारती उपनाम से ही पुकारा जाने लगा। तमिल भाषा के महाकवि सुब्रमण्य भारती ऐसे साहित्यकार थे जो सक्रिय रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल रहे, जबकि उनकी रचनाओं से प्रेरित होकर दक्षिण भारत में आम लोग आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। ये ऐसे महान कवियों में से एक थे जिनकी पकड़ हिंदी, बंगाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं पर थी, पर तमिल उनके लिए सबसे प्रिय और मीठी भाषा थी। उनका गद्य और पद्य दोनों विधाओं पर समान अधिकार था।
2: The great Subramanya Bharti advocated Indian independence, equality, women's education and social justice.
1: और अब हम याद कर रहे हैं आचार्य विनोबा भावे को। आज उनकी जयंती है। 11 सितंबर को महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के गागोदा गांव के एक धर्मपरायण चित पावन ब्राह्मण परिवार में विनोबा भावे का जन्म हुआ। भूदान आंदोलन के माध्यम से आचार्य विनोबा भावे ने देश के वंचित भूमिहीन वर्ग को उनके अधिकार दिलाए। अपने संकल्प के लिए वे हजारों मील पैदल चले। सर्दी में, गर्मियों में, वर्षा में, धूप में, सेवा के बल पर उन्होंने करोड़ों लोगों के हृदय में अपना स्थान बनाया। उनकी प्रेरणा से लाखों एकड़ भूमिहीन को दान दी गई।
2: इनफैक्ट मुकेश, द ग्रेट विनोबा भावे वॉज अ क्लोज फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी एंड ही बिकेम एन इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ द सर्वोदय मूवमेंट। विनोबा भावे प्रमोटेड ग्रामदान, village level voluntary sharing of land and resources, and it's important to mention here that he

0: was the first individual recipient of the Bharat Ratna, and he received it posthumously in the year 1983.
1: और आज ही भारत के महान और ख्याति प्राप्त क्रिकेटर नानक अमरनाथ भारद्वाज की जयंती है. उन्हें हम लाला अमरनाथ के नाम से जानते हैं. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से पहला शतक लगाने का गौरव इन्हें ही प्राप्त है.
0: We are also remembering today the great Karaikudi Mani, a renowned Indian mridangam player and one of the most influential percussionists in Carnatic music.

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 71 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर। सुबह के 9:50 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रही है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन सरबराह मीटिंग में शिरकत के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। बैन अलाक्वामी माली फंड ने मौजूदा माली साल की पहली सहमाही में भारतीय मईशत की शरह तरक्की 7.8% तक पहुंचने के तनाजुर में भारत को आलमी तरक्की का एक कलीदी वसीला करार दिया है। ट्रंप इंतजामिया ने अमरीका में मुलाजमत से महरूम होने वाले H-1B कारकुनों के लिए 60 दिन के क्याम की मुद्दत खत्म करने की तजवीज पेश की है। इम्तिहानात के इनेकाल से मुतालिक एजेंसी NTA ने UGC नेट जून 2026 के अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के फिर से कराए गए इम्तिहान की उबूरी आंसर कीज जारी कर दी हैं। और क्रिकेट में दुबई में भारत पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराकर खवातीन एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग कल नई दिल्ली में भारत मंडपम में शुरू हो रही है। कौमी राजधानी में इस अहम तकरीब के लिए तैयारियां आखिरी मरहले में हैं। इस दो रोजा सरबराह मीटिंग में 11 उभरती हुई बड़ी और तरक्की पजीर मईशतों वाले मुल्क शिरकत करेंगे। इनमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। भारत की सदारत में होने वाली सरबराह मीटिंग का मौजू है मजबूत इख्तियार तआवुन और पायदार तरक्की का क्याम। इस सरबराह मीटिंग में मुख्तलिफ आलमी रहनुमा शिरकत करेंगे। इनमें रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, चीन के सदर शी जिनपिंग, जनूबी अफ्रीका के सदर साइरिल रामाफोसा, मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान, अबूजबी के वली अहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अन्नहियान और इथोपिया के वजीर आजम अबी अहमद अली शामिल हैं। ब्राजील की नुमाइंदगी वहां के वजीर खारजा माउरो वेरा करेंगे। सऊदी अरब के वजीर खारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान अस सऊद भी इस सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम, वियतनाम के वजीर आजम ली मिन हंग उन सरबराह ने ममलकत में शामिल हैं जो इस सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। इधर अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस, आलमी सेहत तंजीम WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अदानम गेब्रियसिस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदर दिलिमा रोजेफ और उन बैन अक्वामी इदारों के सरबराहों में शामिल हैं जो इस तकरीब में शरीक होंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग में शिरकत के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उम्मीद है कि वजीर आजम नरेन्द्र मोदी आज सदर पुतिन के साथ दोतरफा बातचीत करेंगे। इधर जनूबी अफ्रीका के सदर भी आज सुबह दिल्ली पहुंचने वाले हैं, जबकि कुछ दीगर मुल्कों के रहनुमा आज बाद में पहुंचेंगे। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के मौके पर आलमी रहनुमाओं के साथ दोतरफा बातचीत भी करेंगे। ब्रिक्स कारोबारी फोरम 2026 की मीटिंग आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाली है। दिनभर की इस मीटिंग में मेंबर मुल्कों के 1000 से ज्यादा कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव, महकमे तिजारत के वजीर, माली उमूर के लीडर, आलमी सरमायाकार और सनती इख्तराकार शिरकत करेंगे। इसका अहतमाम सनत और तिजारत के सरकर्दा ऐवानों फिक्की, CII और एशोचैम के इश्तराक से ब्रिक्स कारोबारी काउंसिल ने किया है।

एक सरबराह मीटिंग के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यह जानकारी दी है कि दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक अहम रूट्स पर ट्रैफिक का रास्ता बदल दिया जाएगा और मोटर गाड़ियों की आमदोरफ्त पर कुछ बंदिशें आयद रहेंगी। राब्ता सड़कों के साथ साथ जो इलाके मुतासिर रहेंगे उनमें सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, मथुरा रोड, मोतीलाल नेहरू मार्ग, डॉ जाकिर हुसैन मार्ग, अफ्रीका एवेन्यू रोड, शांतिपथ जनपथ, अशोका रोड, बारा खम्बा रोड, नीति आयोग नीति मार्ग, पंचशील मार्ग, कमाल अतातुर्क मार्ग, प्रेस एनक्लेव रोड और लाला लाजपत राय मार्ग शामिल हैं। लोगों को यह सलाह दी गई है कि वो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के तजवीज करदा मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल करें। इधर दिल्ली मेट्रो ने कहा है कि सभी मेट्रो स्टेशन अगला नोटिस जारी होने तक खुले रहेंगे। दिल्ली में वाकई मरकजी हुकूमत के दफातर आज बंद रहेंगे। ब्रिक्स सरबराह मीटिंग 2026 के लिए लॉजिस्टिक्स और सिक्योरिटी इंतजामात में सहूलत की खातिर ये फैसला किया गया। दिल्ली हुकूमत के दफातर, सरकारी इदारे, सभी हुकूमत के इमदाद याफ्ता और निजी स्कूल भी आज बंद रहेंगे। ब्रिक्स सरबराह मीटिंग से पहले दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी वजूहात के सबब इस माह की 14 तारीख तक कौमी राजधानी में ड्रोन उड़ाने और दीगर छोटे फजाई प्लेटफार्म पर मुकम्मल पाबंदी नाफिज कर दी है। ब्रिक्स सरबराह मीटिंग 2026 के पेश नजर इस माह की 11 से 13 तारीख तक राष्ट्रपति भवन और अमृत उद्यान अवाम के लिए बंद रहेंगे। सदर जमहूरिया के सेक्रेटरियट ने कहा है कि कल राष्ट्रपति भवन के अहाते में चेंज ऑफ गार्ड तकरीब भी नहीं होगी। 7वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF 2026 आज मुंबई में इख्तिताम पजीर होगा। इस 4 रोजा फिनटेक फेस्ट में फिनटेक के मुस्तकबिल के बारे में तबादले ख्याल के लिए पॉलिसी साज, मरकजी बैंक, मालियाती इदारे, फिनटेक्स और टेक्नोलॉजी की कंपनियों समेत दीगर आलमी शराकतदारों ने शिरकत की। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बैन अलाक्वामी माली फंड IMF ने मौजूदा माली साल की पहली सहमाही में भारतीय मईशत की शरह तरक्की 7.8% तक पहुंचने के तनाजुर में भारत को आलमी तरक्की का एक कलीदी वसीला करार दिया है। IMF के मुआसलाती महकमे के डायरेक्टर जोली कोजाक ने कहा है कि तवानाई की कीमतों में उतार चढ़ाव का सामना करने के बावजूद खिदमात और बरामदात के शोबे के फरोग की बदौलत भारतीय मईशत की कारकर्दगी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत रही है। उनका यह बयान भारत की शरह तरक्की के ताजा आदादोशुमार, उसके माइक्रो इकतसादी डाटा और ईंधन दरामद करने वाले बड़े मुल्क पर खाम तेल की ज्यादा कीमतों के असरात के ताल्लुक से पूछे गए सवालों के जवाब में सामने आया है। ट्रंप इंतजामिया ने अमरीका में मुलाजमत से महरूम होने वाले H1B कारकुनों के लिए 60 दिन के क्याम की मुद्दत खत्म करने की तजवीज पेश की है। इस इकदाम से इन कारकुनों के लिए अपना नया आजिर तलाश करने या दीगर इमिग्रेशन मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने के लिए वक्त कम रह जाएगा। अगर दाखिली सलामती महकमे की इस तजवीज को हतमी शक्ल दी जाती है तो मुलाजमत से महरूम होने वाले कारकुनों को वहां क्याम के लिए इजाजत न मिलने की सूरत में बिला ताखीर अमरीका से बाहर निकलना होगा। इम्तिहानात के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी NTA ने UGC नेट जून 2026 के अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के फिर से कराए गए इम्तिहान की अबूरी आंसर कीज जारी कर दी हैं। उम्मीदवार इस महीने की 13 तारीख तक UGC नेट पोर्टल के जरिए आंसर कीज को ऑनलाइन चैलेंज कर सकते हैं। NTA ने अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के पर्चों में कई गलतियों के बारे में शिकायतें मौसूल होने के बाद UGC नेट इम्तिहान के इन 3 पर्चों का इम्तिहान दोबारा कराने का ऐलान किया था। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश और ओडिशा में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिन के वक्त अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और मगरबी बंगाल में भी तेज बारिश का इम्कान है। क्रिकेट में भारत खवातीन के एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। कल रात दुबई में खेले गए पहले सेमीफाइनल में भारत ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए बांग्लादेश को 40 रन से हरा दिया। आज दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। इसमें जीतने वाली टीम इतवार को फाइनल में भारत से मुकाबला करेगी। कल जनूबी कोरिया के चेंगवोन में आलमी पैराशूटिंग चैंपियनशिप के
पहले दिन भारत ने एक मजबूत

0: शुरुआत करते हुए सोने का एक, चांदी के दो और कांसे का एक तमगा समेत चार तमगे जीते। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। 18वीं ब्रिक्स सरबरा मीटिंग कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रही है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन सरबरा मीटिंग में शिरकत के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। बैन अलाक्वामी माली फंड ने मौजूदा माली साल की पहली सहमाही में भारतीय मईशत की शरह तरक्की 7.8% तक पहुंचने के तनाजुर में भारत को आलमी तरक्की का एक कलीदी वसीला करार दिया है। ट्रंप इंतजामिया ने अमरीका में मुलाजमत से महरूम होने वाले H-1B कारकुनों के लिए 60 दिन के क्याम की मुद्दत खत्म करने की तजवीज पेश की है। इम्तिहानात के इनेकाज से मुतालिक एजेंसी NTA ने UGC नेट जून 2026 के अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के फिर से कराए गए इम्तिहान की अबूरी आंसर कीज जारी कर दी हैं। और क्रिकेट में दुबई में भारत पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराकर खवातीन एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: दोनशे 29 अंश 9 मीटर्स अर्थात 1305 किलो हर्ट्स वर आणि FM Band 102 MHz वर आपण ऐकत आहात आकाशवाणी परभणी केंद्र। श्रोतेहो, यावेळी सकाळचे 10 वाजले आहेत।
2: परभणीकरांसाठी आनंदाची बातमी, आता सोन्याच्या विश्वासाला लाभणार आहे नवा भव्य आणि शानदार पत्ता, पुणा गाडगे आणि सन्स, परभणीतील नवीन आणि भव्य शोरूम आता शिवाजी पुतळ्याजवळ। अधिक मोठी जागा, अधिक नवी डिझाईन्स आणि पिढ्यान पिढ्यांचा विश्वास, पुणा गाडगे आणि सन्स 1832 पासून।
1: श्रोतेहो, आता प्रसारित करत आहोत मिश्र संगीत हा कार्यक्रम। कार्यक्रमात आपण सुरुवातीला ऐकूयात सुरेश वाडकर यांनी गायलेलं भावगीत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका मार्गदर्शक उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकिन के साथ भी बातचीत करेंगे।

0: ईरान के राष्ट्रपति आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा के उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो कल से शुरू हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया। इस बीच नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडुमेगवो ओजोखो और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेथकिन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सीतारामन ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों और व्यापार तथा निवेश संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा भी जरूरी है। नई दिल्ली में आज सुबह ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही।
1: फॉर ब्रिक्स पर्टिकुलरली हायर इकोनॉमिक एक्टिविटी,
2: विशेष रूप से ब्रिक्स के लिए उच्च आर्थिक गतिविधि और अधिक आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य व्यवधानों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है, साथ ही आपस में जुड़े रहना और प्रतिस्पर्धी बने रहना भी है। इसके लिए वास्तविक बाजार प्रथाओं, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, पूर्वानुमानित व्यावसायिक माहौल, विविध व्यावसायिक संबंधों तथा पारदर्शी व्यापार और निवेश की आवश्यकता है।
0: इस अवसर पर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपनी आर्थिक शक्ति को लोगों के लिए रोजगार, संपदा और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करने की अपील की।
3: ब्रिक्स संगठन आज वैश्विक व्यापार के लगभग एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भारत इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत में निर्मित अभियांत्रिकी में प्रयोग होने वाले साजो सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भारत का निर्यात सर्वाधिक है। भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में भी जाना जाता है। हम ब्रिक्स को इन और अन्य उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में देखते हैं, जिन्हें भारत एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में दुनिया तक ले जाना चाहता है।
0: प्रवर्तन निदेशालय धोखाधड़ी या अनियमित लोन के कथित मामलों की जांच के सिलसिले में कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद में तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ओडिशा के एआरएसएस ग्रुप के आयोजक, निदेशक, परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों से संबंधित स्थानों पर कार्रवाई कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है, लेकिन भारत का संकल्प इसके सभी रूपों के खिलाफ अडिग है। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं वर्षगांठ पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 384 अंक गिरकर 74,519 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। दुपारचा 1:05 झालेली आहे। आता चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम गीत बहार।

0: के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित विश्व के कई बड़े नेता भाग लेंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी इसमें शामिल होंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरू वीएरा करेंगे। सऊदी अरब के विदेश मंत्री युवराज फैसल बिन फरहान अल सऊद भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी भी देखेंगे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन से भी बातचीत करेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया।
3: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मैत्रीपूर्ण और ऐतिहासिक संबंध हैं। भारत युगांडा संबंधों पर मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा इतिहास पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध है और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय क्षेत्रों में साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। इस बीच नाइजीरिया की विदेश मंत्री बियांका ओडुमेग्वू ओजुक्वू और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सीतारामन ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों और व्यापार तथा निवेश संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले ब्राजील के विदेश मंत्री माउरू वेइरा से का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इस दौरान व्यापार और निवेश, रक्षा, ऊर्जा, कृषि और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श हुआ। डॉ. जयशंकर ने उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन से भी मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच व्यापार, संपर्क और संस्कृति सहित द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर सार्थक बातचीत हुई। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा देना भी जरूरी है। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने ये बात कही।
5: For BRICS particularly, higher economic activity.
0: विशेष रूप से ब्रिक्स के लिए उच्च आर्थिक गतिविधि और अधिक आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य व्यवधानों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है, साथ ही आपस में जुड़े रहना और प्रतिस्पर्धी बने रहना भी है। इसके लिए वास्तविक बाजार प्रथाओं, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, पूर्वानुमानित व्यावसायिक माहौल, विविध व्यावसायिक संबंधों तथा पारदर्शी व्यापार और निवेश की आवश्यकता
5: and transparent trade and investment.
1: डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के विषय वस्तु लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि वर्ष ब्रिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि समूह संस्थागत सहयोग के 20 वर्ष पूरे कर रहा है।

0: This year is a milestone.
1: ब्रिक्स के लिए ये वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि हम संस्थागत ब्रिक्स सहयोग के 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। इस अवधि में ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता उद्देश्य और सहयोग ढांचे में काफी प्रगति की है। भारत की अध्यक्षता में इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
2: मंच के उद्घाटन सत्र में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपनी आर्थिक शक्ति को लोगों के लिए रोजगार, संपदा और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करने की अपील की।
3: ब्रिक्स संगठन आज वैश्विक व्यापार के लगभग एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भारत इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत में निर्मित अभियांत्रिकी में प्रयोग होने वाले साजो सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भारत का निर्यात सर्वाधिक है। भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में भी जाना जाता है। हम ब्रिक्स को इन और अन्य उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में देखते हैं, जिन्हें भारत एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में दुनिया तक ले जाना चाहता है। Take to the world as a
2: trusted partner. वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने कहा कि मंच की सफलता का आकलन अर्थव्यवस्थाओं के आकार से नहीं बल्कि ठोस परिणामों से होना चाहिए। ब्रिक्स संगठन वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़ी शक्ति के रूप में लगातार उभर रहा है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
4: ब्रिक्स समूह में शामिल देश दुनिया की 49% से अधिक आबादी, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की करीब 40% और लगभग 26% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स देश एक दूसरे को लगभग 110,000 करोड़ डॉलर का सामान निर्यात करते हैं। भारत का ब्रिक्स देशों के साथ कुल वस्तु व्यापार 2020-21 में 203.1 अरब डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 417.5 अरब डॉलर हो गया है। अनुपम के साथ अक्षित कुमार वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं सहित एकतरफा व्यापार और वित्तीय उपाय लागू किए जाने पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार प्रभावित होता है और ये विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप नहीं है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में मुंबई में कल ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में ये बात कही गई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। दिल्ली मेट्रो ने आज बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है, लेकिन भारत का संकल्प इसके सभी रूपों के खिलाफ अडिग है। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं बरसी पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद ने दुनिया भर में अनगिनत लोगों की जान ली है। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद से प्रभावित भारत दशकों से इसके खिलाफ लड़ाई में आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सभी प्रयासों में साथ खड़ा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज मुंबई में फास्टैग पोर्टेबिलिटी के लिए वन टैग सुविधा का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत वाहन मालिक अपने मौजूदा फास्टैग को राजमार्ग यात्रा ऐप द्वारा नए बैंक खाते से जोड़ सकते हैं। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के अंत तक टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय को 10 सेकंड से कम करना है। प्रवर्तन निदेशालय धोखाधड़ी या अनियमित ऋण के कथित मामलों की जांच के सिलसिले में कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ओडिशा के ARSS ग्रुप के आयोजक, निदेशक, परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों से संबंधित स्थानों पर कार्रवाई कर रहा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 14 जिलों में 44 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य लगातार जारी है।
5: बाढ़ प्रभावित इलाकों में 1046 सामुदायिक रसोई केंद्र चलाए जा रहे हैं। 1942 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं 812 चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी आई है। हालांकि अब भी 8 नदियां

0: खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर पटना, मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में, जबकि कोसी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा और कुर्सेला में खतरे के निशान से ऊपर है। पटना के श्रीपालपुर में पुनपुन नदी का जलस्तर हर घंटे करीब 2 सेंटीमीटर घट रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरला, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गुजरात में भी अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। अमेरिकी ओपन टेनिस में दूसरे महिला सिंगल्स के दूसरे सेमीफाइनल में एलेना रायबकीना ने कोको गॉफ को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब खिताबी मुकाबले में कजाकिस्तान की रायबकीना का मुकाबला मौजूदा चैंपियन और आरेना सबालेंका से होगा। इससे पहले बेलारूस की आरेना सबालेंका ने पहले सेमीफाइनल में अमरीका की जेसिका पेगुला को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारतीय पुरुष टीम और मलेशिया का मैच जारी है। दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया का सामना पाकिस्तान से होगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत आज 4 महीने के उच्चतम स्तर $108.77 प्रति बैरल पर पहुंच गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 363 अंक गिरकर 74,540 जबकि निफ्टी 163 अंक गिरकर 23,315 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। दुपारचे 2:30 वाजलेले आहेत। शास्त्रीय संगीताचा कार्यक्रम नाद ब्रह्म आज राजेंद्र देशमुख यांनी गायलेला राग गौड सारंग आपल्याला ऐकवत आहोत। मध्यलय रचना 3 तालात आहे आणि द्रुतरचनाही 3 तालात निबद्ध आहे। त्यांना तबल्याची साथ संदेश पोपटकर यांनी आणि हार्मोनियमची साथ श्याम देशपांडे यांनी केलेली आहे। ऐकूया राजेंद्र देशमुख यांनी गायलेला राग गौड सारंग।